मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना। आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संतन।

बाजी हारी मुई मेरी माई हौ खरा सुखाला पहरो नहीं दगली लगे ना पाला रहाऊ बाल किस बापै जिन हौ जाया।

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो बहन भानजी, जिन्हें

आओ आगम निर्गम ज्योतिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस के ला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

खंडस अवगन मेरा रहाव, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

करूं सलाम, कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो, आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पाती तोरे मालनी पाती पाती जीओ, जिस पाहन को

कारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

कालपन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूण खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, कबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो।

मोती मुख ताहल काहू ब्याद लगाई सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा जम का डंड मूंड मह लागे किन मह करे निवेरा हर ज्ञानी उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई जो तिस भावे सत

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा कट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरी की। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

जराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिख

रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई। देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती। तेहे रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई। बैसंतर जाके कपरे धोई, गुरमत

राम रमत तिस सब किश सूजै, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकरै, तब है काहे रोया, जीव न की आस करह, जम निहारै।

आओ नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब के

तार चिरायु कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोहर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ, नैन देख पतंग उर्जै पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे, रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना गया भरम सब छूटी।

मैं है तेरा सोच विचार ना देखे खबर ना कर है दीन के बौरे ता ते जन्म अलेख रहाव साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीता।

जीव के दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा वेद पवन मन, सहजे रहे आसमाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो, जब गुर गम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी, सोहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे, जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा, बिटवह राम।

बहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाऊ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

सोकंत नार हम सोई कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना होई आसा कोरी को काहू मर्म ना जाना सब जागे आनत नायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछ।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाउ जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं इबे बीठल उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी।

बाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

पूज पए है। गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम योगन तुम उपकारी रहाओ, तुम मखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदपम खीरा, जाति ओचा पाती ओचा, ओचा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाउ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना बिन

सतगुरु प्रसाद, भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाके, अशली प्रभ पहचानिया, धन्य धन पाया धरनी तर, मिल जन संत समानिया, महला पंजवां, गोविंद गोविंद गोविंद।

हीरा रवदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगतां मह गणिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड़ भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राखे ऐसा खसम हमारा।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़ियां मनहूम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहे आ जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजुलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां छे माह तुड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेव है गुर विचार रहाव राव सस दीपक जाके त्रे भवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोए जी हर की सेवा ते मनों चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साक अंत होए सखाई। हर दिन होर रास कूड़ी है, चलदियां नाल ना जाई, हर मेरा धन मेरे साथ चले, जहां हों जाऊं तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागे, झूठे कर्म कमाई, कह नानक हर का पाणा हुआ, कहना कछु ना जाई। गुजरी

हो गई। वेखो को विपाय बलिहारी गुर आपने, सद बलिहार जाऊं सतगुर मिले हर मन वसे, सहजे रह समाय रहाउ जा पहु पाए अपना। बैराग उपजे मन आय, बैराग ते हर पाईए, हर स्यों रह समाय से मुकत जे मन जिन है, फिर तात ना लागे आय। दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाए, नानक गुर ते गुर होया,

विसरै हर हर करह सदा मन चीत रहाउ हृदय जिन कै कपट वसै बाहर हूँ संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकै अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करै ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचो हम मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा जिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवे साच बुझाए बिन पारसै पूज ना हो वई बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजे ता एह सोजी पाए हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए एह मत तेरी थिर रहे ता भरम विचों जाए रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किछु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताए एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए अठ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हृदय रहे आसमाए नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आए जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मन

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो

मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साग।

हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया होवा वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे, रहाव धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे, अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे, निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे, नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे, आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे, तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा, माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए, हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है, शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई, जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई, जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहे जो आप कराई, जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई, गुजरी महला पंजवा चौपदी कर पहला, एक ओंकार

सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर

शरिया उन कवन खिलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

अठसठ मज्जन कर इचनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी तावत तावत सब जग तायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खात आयो घर कूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़े।

निद पाई, हाथ चरहु हर थूका, खावहु खर्चहु तूट न आवे, हलत पलत कह संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया, एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा, जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी हुए उदारू, सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू, पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ, सतगुरु तुम कहो हुए दयाला संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत।

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो किछ कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहे सर्बथा।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस का।

साध संगत मिल छूटे रहाऊ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका सा तिन ही रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमचकारू वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारू ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारू सगल श्रेष्ठ को धनी की जय जन को अंग नरारू रहाऊ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारू नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरू मुक्त भयो चमियारू गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारू जान कवन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझी।

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखी परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रव सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे तू तह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंधेसा

तह भरम अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही कहो प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्स दीजै। जस गाऊ निस अर भोर, केस संग दास पग चारू।

ते ताई साध संगत को जोहि न साके मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत परजारे मो को सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर।

पंजवा आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाई है जाते काल न बिरथी जाई है आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याय रहाओ मोहे सरन दीन दुख भंजन।

व्यवहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटे सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई इस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशना आवै काम सरण साधु निर्मला

साध संग उधार इहो मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाध।

पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्शली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर गरोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातिक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कूकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

तर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कत है नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा घर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मतंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ सात शरण परेउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे चित हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरै ओह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोडो माया जाला मन बिचार एक लिव लागी हुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कतियले सो वैद जे जाणै रोगी तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदै गिरी जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

अपार सर्व दृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए मन अंतर तैसो जल देव।

है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तबे अवर ना मांगो हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

चिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

आई ऐजी सरन परे प्रभ बख्श मलावे बिनमना अदुआर आई आनंद मूल नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मलाई ऐ जी सदा दयाल दया कर रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात होई सत संगत की वडियाई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनंग सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लब लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाई आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाई।

मनमुख भगत ना होई सुर नर विरत पख करमी नाचे मुन जन ज्ञान बीचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुमारी जी जंत सबे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाच है जिन गुरमुख शब्द लिव लाए से भगत से तत् ज्ञानी जिन को हुक्म मनाए एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यो बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी। गुरमुख नाम अमृत जल पाई जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा बिशन महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावै सतगुर कै भाणे वडियाई पावै नानक आप छोड़ गुर माहे समावै महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवै नानक जिसे आप वडियाई देवै पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरियै तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला हो मैं छट बेकारी हर हर नाम त्याई है।

पाए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। श्लोक महला तीजा सबना

पाई है। हर कर्म बधाता गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। श्लोक महला तीजा काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए ऐस नूं कूड़ बोल के खवाली है जे चलदिया नाल ना

को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा। अंतर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजै, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै,

गुरमुख मिल रहे जप हरनामा उरतार सलोक महला तीजा गुरमुख ध्यान सहज धुन उपजे सच नाम चित लाया गुरमुख अनदिन रह रंग राता हर का नाम मन पाया गुरमुख हर वेख है गुरमुख हर बोल है गुरमुख हर सहज रंग लाया नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया जिसनो कर्म होवे धुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम त्याया महला तीजा सतगुर जिन्ना ना सेवियो शब्द ना लगो प्यार सहजे नाम ना त्याया कि त्याया संसार फिर जूनी पाई है विस्ता सदा खुआर कूड़ै लालच लग्या ना उरवार ना पार नानक गुरमुख उबरे जे आप मेले करतार पौड़े भगत सच्चा दर सोहदे सच्चा शब्द रहाए हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए हर रंग रह सदा रंग राते रसना हर रस प्याई।

क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन।

ताय गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विचों जाय तन मन होवै उजला नाम वसै मन आय नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जां हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाई।

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह।

पाए। गुरमुखे अमृत पीवना वाह वाहो करह लिव लाए, नानक वाह वाहो करह सी जन निर्मले, त्रे भवन सो जी पाए। पौड़ी

का नाम जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ वाह वाह गुणी निदान है जिसनो दे सो खाए वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुरपूरे वाह वाह पावे नानक वाह वाह जो

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ परवदगार दा जिसनो करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसे उधारदा जिस दै होवे वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ अपना

अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर साध जना कै संग भवजल बिखम तर सेवह सतगुर देव अगे ना मरहो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुभर भर मन को होए संतोख त्याई सदा हर।

मत वन्य मित्र असा डड़े से हाँ टुने दी जाग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जां आपे होए दयाल ता भगत संग पर।

तिन संग संग ना की चई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निकल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए ते बहुर ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभूर।

आडल हब को पौड़ी तेरे कीते काम तुदै ही गोचरे सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे बिसम भये बिसमाद।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

समाए भगताए हो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याय पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अघाए। सलोक महला पंजवां।

मुहूर्त कड़ी मुहूर्त न विसरै नानक रविए नित पौड़ी सूर वीर वरियाम किने ना होड़िए फौज सतानी हाथ पंचा जोड़िए दस नारी अवतूत बेन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़िए त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़िए हों तिस अगै दिन रात रहां कर जोड़िए सलोक महला पंजवा किलविक सभे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेचा उपजह नानक बिसरै नाओ महला पंजवा नानक सतगुर भेटिऐ पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पै नंदियां खवंदियां विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाहो वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम

का लिया जिन मन बुठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किसे आपे आप बेअंत अपारिया गुर पूरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया साधा संग अपार अंदिन हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जूनी नह पवै सब किस करते हाथ कारण।

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसह पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत।

आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यो अकाश पंखी अलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो

भस्म लगाई गुरबिन तत ना पाया। काए जपोहरे काए तपोहरे काए बलोह पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरोह निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अठसठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै।

जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंतकार जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै

ठाकुर लिव लागे। जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे। रहाव टूटे माया के बंधन फाहे, हर राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोहयो गुरमोहन, हम बिसम भई मुख लागे। सगली रैन सोई अंधियारी, गुर किंचत कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी, मोहे तुम सर अवर ना लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर, कहो मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली। रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे, यह चाल बनी है भली। लटुरी मधुरी ठाकुर पाई, ओह सुंदर हर ढोल मिली। एको प्रियो सखियां सब प्रिय की, जो भावे पेर सा भली। नानक गरीब क्या करे बेचारा, हर भावे तित राहे चली। देव गंधारी मेरे मन, मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलूलै राती, हर प्रेम पीनी चोली है। रहाव हों फिरों दीवानी आवल बावल, तिस कारण हर ढोली है। कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुल गोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी झोली है। गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देहे टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम

यूं अपने प्रभु भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यों प्रीत कटावऊ ज्यों अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावऊ दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावऊ सर्व सुख बड़े

होई सेवा, दर्शन दुख अवतारेउ, नाम जपत महा सुख पायो, चिंता रोग बदारेउ, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बसारेउ, माया बंद काटे कृपा निद, नानक आप उधारियो, देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन कराम नहार स्वामी, नानक ओट गही रहाओ, आप मेट पये सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा लही।

नाम रस माते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

रहाउ जिन किया तिस सिमर प्राणी यो प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावे हैं मर जन्म है मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राख हो राखन हारा करन करा

चंचल सुपने ही पुर जायो, इतनी ना बूझै कब हूँ चलना, विकल भयो संग मायो रहाओ, कुसम रंग संग रस रचिया, विखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सुख कर माने, बेग तहा उठतायो, फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी, नानक लियो समायो, देव गंधारी पंजवा।

हर चरनी लागो तिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के तरन स्वामी की अही है कोट पराद महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस सर नहीं है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनासे उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विख नास है

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरनिहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ। साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उर धारो देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान धार दिन रहनी जी प्राण ते प्यारा रहा शास्त्र वेद प्राण अवलोके सिमरत तत् बिचारा दीना नाथ प्राण पत पूरन भवजल उदरनहारा आदि जुगाद भगत जन सेवक ताकी दिखे अधारा।

को उपजी छोड़ ना कतहु जाता रहाउ। बैखत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल।

जब कितवो तब तुहारी, उन समाहार मेरा मन साधारी, सुन गावो गुरबचनारी, बल बल जाऊ साध दरसारी, मन मैं राखो एक असारी, नानक प्रभ मेरे करने हारी, देव गंधारी महला पंजवां।

तुहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूँ मद निरारी रहाउ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावह हर के, रतन जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिध पुत्र, तास ग्रास उचारियो। नानक उठ गई जगदीश, पुनः पुनः बलिहारियो।

आहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गोहर की को द्वार मिल संगत ताज अभमान।

छुटकी रे मन छुटकी रे ताकत संग ना छुटकी रे रहा जो काजर भर मंदर राख्यो जो पैसा कालू खीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै, कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै, स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान धरै, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नवा, सब किस जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार, आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं झूठी

अचर्ज है रीत मन मूरख अजहू नह समझत सिख दै हार्यो नीत नानक भौजल पार।

कोय गन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नै को जानै जोगी जति तपी पाचहारिये अर बहु लोग सियाने रहाव इन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते भरे भरे सखनावै यह ताको व्यवहारी।

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइया मेरी जिंदड़िए, अनक ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। गरीब चुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपूरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन हर प्रभ पासे राम। धन धन गुरु हर दसिया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम बिगासे राम। राग बिहागड़ा महला चौथा, अमृत

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम, जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम, अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम, पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए, चहो कुंडी चहो जोग जाते राम, हौमै मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर तरनाते राम, अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम, बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिया।

गुण गावे हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिया है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

अब बिहागड़ा मोहल्ला चौथा जिन हर हर नाम ना चेतेओ मेरी जिंदड़िए ते मन मुख मूड आने राम जो मोहे माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए ते अंत गए पछताने राम हर दरगाह ढोई ना लहन मेरी जिंदड़िए जो मन मुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरमिल उभरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए।

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन दुष्ट।

एक अराध्या मेरी जिंदड़िए तिना नाही किसै दी किस चडाराम गुर सेवै हर महल पाया मेरी जिंदड़िए झख मारन सब निंदक कंडाराम जन नानक नाम त्याया मेरी जिंदड़िए तुर मस्तक हर लिख छडाराम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए

सहस सियाणप नह मिलह मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधातै धुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

संत प्रसाद तरे भव जल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिय प्रेम लगा

चरण लगे है मन प्रिय प्रेम कणा हर की भगत मंगे है हर भगत पाईए प्रभ त्याईए जाहे मिलिए हर जना मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण भ्रम पीत हर हर मिल भगै है।

मन तन रव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदारनु प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनु जो शरण आवे तिस कंठ लावे एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नान।

पंजवा खोजत संत फिर है प्रभ प्राण अधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारी कर दया लड़ लाए लीजी है देह नाम अपना जपू स्वामी हर दर्श पेखे जीजी है समर्थ पूर्ण सदा निचल ऊच अगम अपारी बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्राण प्यारी जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम तपतना कतह बुझै बिन स्वामी सरना राम प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी नाथ निर्गुण कछ ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना नानक चातक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मन होना बीसरै आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरै अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको धामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाणे दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोए करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदाहरण सरन स्वामी कृपा निध दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन भ्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन सम

आईया सहज न लगू भाव शब्द साधना पायू मन हठ क्या गुण गाय नानक आया सुप्रवान है जे गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आपना पछाणे मूड़ा अवरा आख दुखाए मुंडा दी खसलत ना गईया अंधे विछड़ चोटा खाए सतगुर कै भै भन ना घड़ियो रह अंक समाए अन दिन सहसा कदे ना चूकै बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला नित

आए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गात मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्ला का तिसनो त्याई दिया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठै जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का नाउ वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित भावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक सरन करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

जगत उपाया करत दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करै सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अनदिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्द उर्द उर्तार अंतर प्रीतम वसिया तुर कर।

0: पाई है। हर दिन रहे सदा गुण गाय, बिन कर्म किने ना पायु,
1: भौंक मोए बिल लाय।
0: गुर कै शब्द मन तन भिजे, आप वसै मन आई, नानक नदरी पाई है। आपे लय मलाई पौड़ी, आपे वेद पुराण सब शास्त्र, आप कथै आप भीजे, आपे ही बह पूजे करता, आप परपंच करीजे, आप परविरत आप निर्विरति, आपे अकाथक थीजे, आपे पुन सब आप कराई, आप लिप्त वर्तीजे,
2: आपे सुख दुख देवे करता,
0: आपे बख्श करीजे। श्लोक महला तीजा। सीखा अंदर हो जोर छाड़ तू, पहो कर चल गवाए, गुर कै भय कीते निस्तरे, भय विच निरपहो पाए। मन कठोर शब्द भेद तू, शांत वसै मन आए, शांति विच कार कमावनी, सा खसम पाए थाए, नानक काम करो।

आपे खांडवर भांड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनों गुरमुख करे हरे आपे

पर बुझै सब आपे, एक थै आपे करे इयाणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लब की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाइए नानका, हादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी,

नानक सो प्रभ सिमरिया तिस देही कौ पाल पौड़ी आपे अठसठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए हे नाम आप दयाल हुए भौ खंडन आप करै सब दान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगह पाए मान जिसदी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान। श्लोक महला तीजा। नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाई शब्द ऐस्यों चेतना लावई जित सुख वसै मन आई तामस लगा सदा फिरै अहनस जलत बिहाई जो तिस भावै सो

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय कीमत किनै ना पाइया कितै ना लया जाय गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय नानक आप अमेव है गुर किरपा ते रहिया समाय आपे मिलिया मिल रहिया

नानक गुरमुख पाई जां को नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

लाए ध्याना आपे मोनी वरतदा आपे कथै गियाना कौड़ा किसै ना लगई सबना ही भाना उस्तत बरन ना सकिए सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पहला।

अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किश हुक्मे आमदा सब किश हुक्मे जाए जे को मूर्ख आप हूं जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझे।

तो होए किस जोगी की नगरी सबको वसे पेखी जोग ना होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी। आपे जंत उपायन आपे आधार

तृप्त भई हौ तिन बलिहार जाऊं। मैं की नदर ना आवही वस है हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छुड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम ते आए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लग तरै संसारा, गुरमुख ज्ञान रते जोगे अंतर, चूकै मोह गुबारा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहया समाय, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौं क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौं औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हौं जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए हौं सब वेस करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा।

रतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता बड़ा हंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे बड़ा हंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरै ना कबहू सीजै। वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना।

ये सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कित ना लेखा। यो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जात है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

खसम भावै सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदै लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ पिया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड मुग्ध ना।

किनारे सत्या शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सत्या पाए प्यारी कंत सवारी हर हर त्यो ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन।

राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे आपर पूरे राम फिर रव रहे आपर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर भावै।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो।

सत्य शब्द लिव लाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन ज्ञान रहाय। दूजे पाए परम भगुती, मनमुख मोही जम काल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वस्त ना पाल। जो पावे सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सिखाई। मनमुख अंधले ज्ञान विहूने, दूजे पाए खुआई। बिन नावे को छूटे नाही, तब बादी जमकाल। नानक अंतर तेरे निदान है, तू बाहर वस्त ना पाल। मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै, एक सच लगे वापारा। सतगुर सेवन अपना, अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा, नामे नौ निद पाई।

खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबार राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चै दरबारा राम आप करे किस आखी है होर करना किछु ना जाई राम जित भावै तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वर्याम ना फुस्ती कोई जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई गुर प्रसादी आप गवाई नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखी है होर करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर फूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीयै पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागै, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हऊ मैं मैल परिजै, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागै, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पंडारा, गुरमुख होवे सोई बूजै, सच सवारण हारा, आपे मेले सो हर मिले, होर कहना किछु ना जाए, नानक बिन नावै भरम भलाया, एक नाम रते रंग लाई।

टेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाती देहो सतगुर चरण हम तूरा।

देव। हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनका दुख भरम पौ भागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हर आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई। बड़हंस महला चौथा, हौ गुरबिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम त्याया, जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुरबिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया,

तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई राम हर नाम देवै मेरा अंत सखाई राम हर नाम मेरा अंत सखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर नाम छड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम त्याई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम निफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मोए मर चूरे कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर्शना करियो हो जिन्नी हर हर नाम ना त्याया जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती बड़ा हंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करहे बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता।
सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम। जप हर हर जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम। हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनके दुख पाप नवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा। जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा। अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरा मन पाया। हर तारु हो हर तारु कृपा।

जड़ हर हर नाम रतन नाराम, जड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सुख घने, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाण नाम जान, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाय, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग वड़ हंस महल।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए पै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन्न।

पूर्वकमाया तन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इतै तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जाना आगै सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गार्ग कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाई है नाम तिसै का लीजै आगै हुक्म ना।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवै लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवै है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उथे जाना, जिसका किया तिन्हीं लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन कर

सेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार हुआ सच्चा कर सचड़ै सेवी।

गई परांति पेर निर्मायल सदा सुखदाता नानक शब्द मलाए फिर हों चुनिया भी मिल है जे सतगुर लाग है साचे पाए।

समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहेली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप

नाम संभाले, सदा नाम संभाले, सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, शब्दे काल मार सच उरतार, फिर आवन जान ना होया, सच्चा साहिब सच्ची नाही, वेखै नदर निहाले,

माया विचों कटी है। सचड़े नाम सुमाए सच्चे नाम सुमाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रहे दिन राती विचों हों मैं जाए। जिन्नी पुरखी हर नाम चेत लाया दिन कै हों लागू पाए काया कंचन ता थी है जां सतगुर लए मिलाए। सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर भरम भलाणिया क्या मुँह देसन आगे जाए क्या देन मुँह जाए अवगुण पछताए। दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाए। तिस जेवड़े अवरना सूजई किस आगे कही है जाए। सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाए। जिन्नी सचड़ा सच सलाहिया हों तिन लागू पाए। से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए। सच्चे सर नहाए सच्चे सहज सुभाए नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुर दिया बुझाए। अन दिन भगत करह रंग राते नानक सच सम

जिन्नी सचड़ा सच ते आया हों तिनकै लागू पाई। वडहंस की वार महला चौथा लला बहलीमा की धुन गावनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। शब्द रत्ते वडहंस है सच नाम उरतार। सच संग्रह है सद सच रह है सच्चै नाम प्यार। सदा निर्मल मैल ना लगई नदर कीती करतार। नानक हों तिनकै बलिहार ने जो अन दिन जप है मरार। महला तीजा मैं जानिया वड हंस है

भाव पौड़ी तुम आपे ही आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर ना दिया।

काम क्रोध विनाश सतगुरु का भव छोड़िया मन हट काम ना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाई। इस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाई। शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भुलाई। पै किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक ज्योति सुभावै।

ना हो गई। अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय। मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय। सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय। घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय। पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गवाय। नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी। तित जाए बहु सत संगति, जित हर का हर नाम बिलोई। सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् ना खोई। नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोई। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई। तिस गुर को सब नमस्कार करहु, जिन हर की हर गाल गलोई। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करहे विचार विछड़िया का क्या विछड़े जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

आए दूजे कर्म कमाए नानक मनमुख जीवदिया मोए हर विसरिया दुख पाए पौड़ी जिस अंतर हिरदा शुद्ध है तिस जन को सब नमस्कारी जिस अंदर नाम निदान है तिस जन को हौ बलिहारी जिस अंदर बुद्ध विवेक है हर नाम मरारी सो सतगुर सपना का मित है सब तिसह प्यारी सब आत्म राम पसारिया गुर बुद्ध बिचारी। सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जी के बंधना विच हो मैं कर्म कमाई

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

गुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायरत रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई। बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजे भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो चित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना होवे हूं मैं शब्द जलाए। कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए। नानक पूरे कर्म

गुण गाय नानक वेख विगस्या हर सच्चे की वडियाई पौड़ी जिनकै हर नाम वसिया सद हिरदय हर नामो तिनको रखन हारा हर नाम पिता हर नामो माता हर नाम सखाई मित्र हमारा हर नावै नाल गल्ला हर नावै नाल मसलक हर नाम हमारी करदा नित सारा हर नाम हमारी संगत अत प्यारी हर नाम कुल हर नाम परवारा जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया हर हलत पलत सदा करे निस्तारा श्लोक महला तीजा जिन कौ सतगुर भेटिया ते हर कीर्त सदा कमाहे चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया सच्चै शब्द समाहे कुल उधार है अपना मोख पदवी आपे पाहे पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया जो गुर चरणी जन पाहे जन नानक हर का दास है कर कृपा हर लाज रखाए महला तीजा हौ मैं अंदर खड़क है खड़के खड़क विहाय हौ मैं वड्डा रोग है मर जमे आवे जाय जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आय नानक गुर प्रसादी उभरी हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर अविनाशी पुरख बिधाता हर नाम हम सिरेव है हर नाम हम पूज्य है हर नामे ही मन राता हर नामे जेवड कोई अवर ना सूजे हर नामो अंत छडाता हर नाम दिया गुर पर उपकारी धन धन गुरु का पिता माता।

धुर पूर्व लिखे आस पौड़ी, हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार, जित खाया हमको तृप्त पई, हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे, होर पहनन की हमारी सर्द गई, हर नाम हमारा वणज

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिने विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया।

हो गई। जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार, एक आपे बख्श मलायन, दुबदा ताज विकार, नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा, सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार।

कहो अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया खिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुम्हाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवे मरे बिख खाई गंधन वहन रत्ता हितकारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा में सहज ना चाखिया।

मैं मूर्ख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै, सूठ महला पहला, हौ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी, अमृत चाख परम रस राते।

अनुपल्ल साच्या शब्द समाने रहाओ। तू पूरा हम पूरे होशे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते, हर रसना जप मान रे, तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे, अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे, अवर ना दिसै किस सालाही, तिसह शरीक ना कोई, प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। चौथ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल ना कर्मा, जात अजात अजूनी संपहो, ना तिस भाओ ना भरमा, साचे सचियार विटोह कुरबान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचा शब्द नीशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुत बंधक, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सबाई।

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

एहो रस त्यों लहो गुर मेलै हर दे रहाउ संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए अट तट तीरथ मजना गुर दर्श प्राप्त हो।

सर अपसर की सार ना जाने फिर कीच बड़ाही जीव अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर ना वो काही जीव निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जीव पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो हो सच गुर बचनी फल पाही जीव ज्यों पावै त्यों राखो हो हर जीव जन नानक शब्द सलाही जीव सोठ महला पहला पंच पदे अपना घर मूसत राख ना साक है की पार घर जोहन लागा घर दर राख है जे रस चाख है जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कमन मत लागा नाम विसार अन रस लोभाने फिर पछताहे अभागा रहाउ आवत को हरख जात को रोवह एह दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग पगावै गुरमुख सो अनरागा हर रस ऊपर अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन एहो रस खोया।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादि दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो अपयो परम सुख पाई निज करवासा।

हर पाई विचों आप गवाई भगतां का कारज हर आनंद है अन बिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर सियों रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपने दासा नू कृपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हों जीवा गुरमति भव भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यो गुर सेव्या चित लागा।

इसका अंत ना पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुर विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रत्ता एक रंगी, शब्द सवारन हारा। सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर घाट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटोह वारिया सदही, तेरे नाम विटोह बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहे आसमाई। शब्द ना जान है से अन्नी बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माही समाणी। मान मुख मुग्द गोबारा, आपे कर वेख मार्ग लाए भाई। किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटे भाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर भाई। अवर ना दूजा कोई।

आप राखै जो तेरे मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे। सदा लिबहै तेरे नाल रहाव, दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावै। ना बूझै विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया। हरनाक्ष नखै बिदारी, प्रहलाद जन सद हर गुण गावै। हर जियो लए उबारी, आपस कहो

सरनाई। अपनी नदर करे पत राखै, हर नामो दे वडियाई रहाओ। पूरे गुरते आप पछाता, शब्द सच्चै विचारा। हिरदै जग जीवन सद वस्या, अज काम क्रोध अहंकारा। सदा हजूर रविया सब ठाई, हिरदै नाम अपारा। जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा। सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया। हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावै गुणी अगाया। कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया। राम नाम की गत कोए ना बूझै, गुरमत हृदय समाई। गुरमुख होवै सो मग पजाणै, हर रस रसन रसाई। जप तप संजम सब गुरते होवै, हृदय नाम वसाई। नानक नाम समल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई। सोठ महला तीजा दु तुके, सतगुर मिलै उल्टी पई पाई। जीवत मरै तां बूझ पाई, सो गुरु सो सिख है पाई। जिस ज्योति ज्योत मलाई, मन रे हर हर सेती लिव लाए। मन हर जप मीठा लागै पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाउ। बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो परवान है पाई, ये गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाईऐ पाई, गुर शब्दी मेलाए। सोठ महला तीजा घर पहला, तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे भाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे भाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है भाई, हिरदै रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे भाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाई, हौं मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

दुबदा सहज समाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ गिल बिख काटन हारा शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या।

तुन आप बजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे सतगुरे आप।

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरे मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भए साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा पई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यों प्रीत अंतर मन भेदिया।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़ियाई।

ताही, जे को रखै लुकाई, सब किस तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाई, जन नानक अवर ना कोई, सोठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहता जा रहा, जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

अल्लाह सब किस कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत कृपाला सोरठ महला पंजवा घर पहला चौतुके गुरु गोविंद सलाहिय पाई मन तन हिरदय तार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम ना उपजै पाई से तन होए शार साध संगत को वारिया पाई जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना पाई जिसके सब किश होए गुरपूरै जानाया पाई तिस बिन अवर ना कोए रहाव नाम मिहूने पच मोए पाई गणत ना जाए गणी बिन सच सोच ना पाई पाई साचा अगम धनी आवन जान ना चुकई पाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा पाई दे नावे एक कणी सिमरत सात सोधिया पाई बिन सत गुर भरम ना जाई अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाई चारे कुंडा सोधिया पाई बिन सतगुर नाही जाए वड भागी गुर पाया पाई हर हर नाम ते आई सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोई नदर करे जिस अपनी पाई तिस प्राप्त होई कोट मदे जन पाई है पाई बिरला कोई कोई नानक रत्ता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होई सोठ महला पंजवा दो तुके जौ लो भाओ अभाओ इह मानै तौ लो मिलन दुराई।

पाई साकत का बकना यूं जानो जैसे पवन चुलाई कोट पराद अशादियो इहुमन कहना कछु ना जाई जन नानक दीन सरन आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई चोट महला पंजवा पुत्र कलत्तर लोक ग्रह बनता माया संबंदे ही अंत की बार को खरा ना होसी सब मिथ्या असने ही रे नार काहे पपोर हो दे ही उड़ जाए गो तुम बादरू एक भाजो राम सने ही रहाओ तीन संज्ञा कर दे ही कीनी जल कूकर पसमे ही होए आमरो ग्रह मह बैठा करण कारण बिसरोही अनक भांत कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत बापरे फिर पाचे पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारी तिस त्याग हो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुरु ओट गहे ही सोट महला पंजवा गुरु पूरा पेत्यो वडभागी मन है भया परगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार है आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाउ अंतर जामी करण है हारा सोई खसम हमारा निरपो भय गुरचरणी लागे।

आस पुजाई दास अपने कौ तू विसरह नाही चरण धूर मन भाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन।

साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे, फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो परम पलावा कहियत, तिन मह उर्जियो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात, एहो खसम का किया, जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाउ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सब ना करत उदारा, कहो नानक गुर बिन नहीं तरिय, एहो पूरन तत बिचारा, सोठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचारे, राम नाम तत सारा, किल बिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बाणी रहाओ, मुकत भुगत जुगत सच पाईए, सर्व सुखा का दाता, अपने दास कहो भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता, सरवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई, वड्डे भाग रतन जन्म पाया, करहो कृपा कृपाला, साध संग नानक गुण गावे, सिमरै सदा गोपाला, सोठ महला पंजवा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, गावहो सुनहो पढ़हो नित पाई, गुरपूरै तू राख्या रहाओ, साचा साहिब अमित वडाई, भगत वच्छल दयाला, संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला, हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो, सर्ब वेला मुख पावो हो, जरा मरा ताप सब नाठा,

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दाता रे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंधेसरु ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाद बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रते ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी कापूर सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख

संतन सिंह हमलाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राये अब कहां करे तू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर सिंह मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

सुख नहीं पाई हो रेन तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाई है घाल ना भान अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्द भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह न जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पाणी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाई है पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर।

मन सदा त्याई सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवर्त।

आवहो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

थीवै विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हौ मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहेउ सर्ब मह जल थल रमैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायउ सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन सीतल अग्न न अंतर तुकी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडावहो एह भीतर ते इनको डारहो आपन निकट बलावहो अपनी बिद आप जनाव हो।

औखद मुख देव काटे जम की फंदा रहाउ। सम्राट पुरख पूर्ण बेदाते आपे करने हारा, अपना दास हर आप उभारिया, नानक नाम अधारा। चौथ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लहो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो।

हेरो काट सिलक कीनो अपनो दासरो तव नानक कहानी होरो चोठ महला पंजवा पये कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पये लाग हर चरनी गोविंद के गुण गाए पलो समूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया तगली इच्छ पुजाई सोरठ महला पंजवा गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखन प्रभ कीने।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संतो हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोठ महला पंजवा मेरा

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया।

तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़।

जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख।

सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक गाय सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी ता गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रस कर

नावै अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सरन स्वामी सूरत महला पंजवां गुरपुरै चरनी लाया हर

सदा सुपाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा।

कार्य सगल सवारी रहाउ मिन साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो।

सर्व गुणा सुखदायो। मंदर चढ़ के पंथ निहारो, नैन नीर भर आयो। हौ हौ पीत भयो है बीचो, सुनत दे

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब भेद जाने तां किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवां सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

आप प्रभ स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संतां तूरी चौठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा धारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वडिआई।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहा नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दन

कै तू प्रभु अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभु अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

हर हर हर अरादु हर अराद सबू किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै किसकी गत हुआ उधरह सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया। चौथ महला पंजवां, गुर पूरा आराधे, कार्य सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे। संत हो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। चौथ महला पंजवां, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाई है।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवां प्रभ अपना हृदय त्याई घर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

सगले दास को सुमत दीती रहाव प्रभ सगले थान वसाई सुख शांत फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट तो होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अरादु हो गुरपूरे की सरनाई रहाओ तिसे प्रापत जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई।

आओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सुगत सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ।

मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रथ संपत, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्याए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध संग कब

बिखियन को तावत केहे बिदरूप कौ ताहि रहाउ। बेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावै। पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेते हो चिंता मन काटी जब की फांसी। सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही यह सुख माया के उर्जे ओ कहां गवार।

पीत पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग साड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इन सिंह ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो।

आसा मनसा सगल त्यागै जागते रह निरासा। काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी। नानक

बहुत हित जासियो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जां सियो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो। मड़े मसान ना जाए कृष्णा राच ना पर कर जावा।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

तै वाद बखाने बिन हार पत गुआई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई।

जिस पर तीत ना आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब पाई हौ तिसके बल जाओ। वो निर्गुण आरे पालदा पाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है पाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै पाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया पाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया। बाहर काढ बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी

प्रपाती रहो नगल फिरो बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत तराई मन की मैल ना उतरै एह बिद

भूम बहुअर्पे नह मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंड होता खट कर्मा रत रहता। हाँ हाँ करत बंदन मह परया नह मिलिए एह जुगता। जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहे आ। वड़ी आर जा फिर जन्मे हर सिंह संग ना गए आ। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अखारा। सेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दी।

जे गुर समझाई है सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास मोहठ गौली पाईन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना।

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सहन से सजना, ये गुरमुख मिल है सुपाय, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाय। दूजे पाए लगे सजन ना आखी है, जे अवमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगिया, फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने, सदा सदा कुमाया। सलोक महला।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज विक संग्रह करत आप खवाया। गुरमुख विरले सोजी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन सीतल होया,

बिरसा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुर पूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना पूरी दे जियो वंजे चौखनिए। सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई।

हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है।

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना, हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, अखत तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हों मैं परम पलाए। गुर प्रसादी भव पया, वडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ, हों मैं शब्द जलाए। सच रते से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाए। पौड़ी।

नानक नगरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यो छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड गया ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार एहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारिया जिन्नी सुन मनिया हर नाम तिना हों वारिया गुरमुखियां हर मेल मलावन हारिया हों बल जावा दिन रात गुर देखण हारिया सलोक महला तीजा विण नाम है सब परम दे नित जग तोता सहसार मनमुख कर्म कमावनी हों मैं अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख अन्न देने उस्तत होवे मनमुख भरमे सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जाग है सवह सुपाए नानक नाम रतियां बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरतै एक इको उत्पतिया जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमती देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आयु जित किस सोजी पाई गिण जिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए नानक शब्द पछाणी है नाम वसै मन आए महला तीजा इक्का बाणी इक गुर इको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच रतनी परे भंडार

अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए। पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए, जो रत्ते हर नाए। जिन गुर कै शब्द सलाहया हर त्यों रहे समाए। पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई, ना तन पल्ले पाए। पढ़ थके संतोख ना आयो, हन दिन जलत विहाय। कूक पूकार ना चुकई, ना संसार विचों जाई। नानक नाम विहूनिया मोहे काल उठ जाए। पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारी, मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित किस हों बल जाई। गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम त्याई। हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई। बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई। सलोक महला तीजा, पंडित मैल ना चुकई। जे वेद पढ़े जुग चार, त्रै गुण माया मूल है। विच हों मैं नाम विसार। पंडित भूले दूजे लागे, माया कै वापार। अंतर तृष्णा भुख है, मूर्ख भुखिया मोहे द्वार। सतगुर सेवै सुख पाया, सच्चै शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई, सच्चै नाए प्यार। नानक नाम रत्ते सहजे रज्जे,

नानक गुरमुख मिला बड़े आईया, जे आपे मेल मलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी। जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साद सा त्रिपतावनी। गुण गावे प्यारे नित, गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे। यों गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है, जा आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना, दरगाह पावह मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित, तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार, गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुर।

పిచ్చా సుఖ నహి మర జమ్మహ వారు వార తృష్ణా కదే నా బుజ్జై దుబదా ఓ ఏకవార మోహ కాలే తినా నిందక తిత్ సచ్చా దర్బార్ నానక నామ విహూణియా ना उरवार ना पार पौड़ी जो हर नाम ते आईंदे से हर हर नाम रते मन माही जिन्ना मन चेते एक अरादया तिना एक सबिन दूजा को नाही से पुरख हर सेम दे जिन तुर मस्तक लेख लखाही हर के गुण नित गाम दे हर गुण गाए गुणी समझाही वड्याई वड्डी गुरमुखा गुरपूरै हर नाम समाही सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर तीजै आप गवाए शब्द मरह फिर ना मरह ता सेवा पवै सब थाए पारस परसै पारस हुवै सच रह लिवलाए जिस पूर्व होवै लिखिया किस सतगुर मिलै प्रभ आए नानक गणतै सेवक ना मिलै जिस बख्शे सो पवै थाए महला तीजा महल कुमहल ना जाननी मूर्ख अपने सुआए शब्द

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारै तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कारण कमाई जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

करहु पापिष्ट हत्यारी। ओहे कर कर फिर है कसुद मन ज्यों तरखट नारी। वड भागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो हो सतगुर दया कर।

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जा तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बता थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअन अव गुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म हुआ हासल तदे हुए निपड़िया।

तेन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूतपूर्व।

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

परतह या तन की यह बड़ाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहाओ ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया देहरी लौ बरी नार संग पई आगे सजन सोहेला मरखट लो सब लोग कटंब भयो।

झूठी माया आप बंधाया, ज्यो नरनी भ्रम सूआ। वेद प्राण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निरासा। मन रे सरयो ना एक काजा, भजियो ना रघु।

पर माहे लिखे ब्रह्म ज्ञानी कहो कबीर जन पये खालसे प्रेम भगत जे जानी कर दूजा दोए दो।

जाई हमरा भरम गया पहो भागा जब राम नाम चित लागा रहाऊ बाजी गर डंक बजाई।

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम कर कर मैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

तो पंच सहल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटियाउ भा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया।

नाद समायलो रे सतगुरु भेटले देवा रहाउ जह चिल मिल कारज संता तह अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुरु प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह जी।

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतल

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरप दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूतन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह कास्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचार्यो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया।

काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नव निध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम भये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहाओ जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाति साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोर।

सा जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा आड़ मास नाड़ी को पिंजर पंख।

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन आवो मोख द्वारा ऐसा नाम रतन निर्मूलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया।

राखै जा सोए, जह देखा तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाई जाय, जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए।

जो जुगत पछाण गुर प्रसादी को जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचार आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी तामी तह नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया का धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तुय को सहस मूरत नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोर।

जिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो, अन दिनों मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिं को, होए जाते तेरे नाम वासा। तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख नाही।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दाजह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रखे सुख सहज समाई।

सत तृष्णा यज्ञ बुझाई अंतर शांत सहज सुख पाए गुर कै भाणे चलै ता आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए ना शब्द बूझे ना जाने बाणी मन

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन

समावे ता इस मन की सोजी पावे। मन मै मत मैगल मिकदारा गुरु अंकस मार जवालन हारा। मन असाध साधे जन कोई अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

तन संचय है मूर्ख गवार, मनमुख भूले अंध गवार। बिख्या कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। साचा तन गुरमति पाए, काचा तन हुनिया वै जाए। रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार, भवजल डूबे ना उरवार ना पार। सतगुर भेटे पूरै भाग, साच रखे अहनस बैराग। चहो जोग मह अमृत।

तब किस साचा साचा है सोवे उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई सच साचा सच आप दिरड़ाए नानक आपे वेख आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नाम की कीमत मित कही ना जाए ते जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हमै विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हमै जाए आपे बख्शे लए मलाए विख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोई जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है।

ले गुर परसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

हर उड़तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरखे अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर

नित तीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गत में तो कह ना सकह प्रभ हम क्यों कर मिलह अभागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बाणी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के लिख पाप लह जानी रहा ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख पुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महा

आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई भल मानू हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवे हो बेग बेगाली।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विछूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपेहो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खत बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगाह पावह फिर जन्म नायावह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बन आई, बहु चिंत वसारी, हर नाम उर तारी, नानक हर पय है सखाई। तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लिख, हर जप हर गाओ, हर पौ जल पार उतारी। मन बचन हृदय त्याए हर, हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी। मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होए दिन राती, हर कीरत कर बनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट, तब पयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पात राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है सरन तुम्हारी। तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध, तेतीस कोट मुन जन, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को विरला पावे, जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामे नाम, हर जस उत्तम काम, जो गावे हैं सुने हैं तेरा जस स्वामी। हम तिनके सद बलिहारे जाओ। रहाओ सरनागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हों पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे है, सब गावे है हर हर उत्तम बाणी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

ला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन पीतर।

लकी है, तेरी कुदरत कौन विचारे। जल थल महियल रविया सब ठाई, अगम रूप गिरधारे। कीर्त करह सगल जन तेरे, तू अबनासी पुरख मरारे। ज्यों पावे त्यों राख स्वामी, जन नानक सरन द्वारे। तनासरी महला पंजवां, दिन जल प्राण तजे है मीना। जिन जल स्यों हेत बढ़ायो,

सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद भीतर वसिया, ता दुख परम पहु भागा, पई प्राप्त वस्त।

बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै

पाया संत संग रहे ओला हर तन संचन हर नाम पूजन एहो नानक कीनो चोला।

प्रीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धभ भस्म संगीत अमृत संग ना

आनंद राज पाई मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाय।

ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कै लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन ओह चलत दिखाया गूजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हो हम बारिक तुमरे तारे।

समझावहु हमे अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना।

हार तनासरी महला पंजवा अब हर राखन हार चितारिया पतत पनीत किए खिन पीतर सगला रोग बदारिया रहाऊ गोष्ट पई साध कह संगम काम

टेकै मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवां मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राखियो अपना कर बिरता

काल आन संयम किछ ना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन।

रहाउ स्वर्ग मृत पयाल कुमंडल सगल व्यापे माए जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइय पाइय सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

रहाउ साध की शोभायत मचकीनी संत वडाई हर जस कीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन होवह एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक करां।

पास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

करह करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किन ना दुत्तर भाखे

गहू पार ब्रह्म सरन, हृदय कमल चरण, अवर आस कस पटल ना कीजै, सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा कीजै, तनासरी महला।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रब देख कस संग नाही चलना जा को रे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख गिनस रहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवाले।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। नासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवनित रिद सिद्ध हर, लाग रही जन पाई। संतन को अंद सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का,

कर आई। संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय। तना श्री महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा।

तब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवा, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे, तां का युग में धर्मा, जन

जिस जन कै पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परों रवाल रस रस गुण।

युगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

नायक सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी। राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी। मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भावनिद पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहूं जात। सतगुर पूरै कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को भई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी। साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गवारी रहाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहा।

नानके आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बक

नाम रंग जागा, आलस सीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यो मन लागा रहाउ, जह जह पेखो कह नारायण, सगल कटा महतागा, नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा, तनासरी महला पंजवा, जन के पूर्ण होए काम, कली काल महा बिख्या मह, लज्जा राखी राम रहाउ, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट न आवे जाम, मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का ताम, चरण कमल हर जन की थाती, कोट सूख विश्राम, गोविंद दामोदर।

ज्ञान सगल मनोरथ पूर्ण हो वह सिमरो तुमरा नाम रहाओ। चरण तुम्हारे हृदय वास है संतन का संग पाओ। सोग अग्न मह मन ना व्यापै आठ पहर गुण गावो। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदे हंत प्रभ जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जन्म ना छापन। तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक। मानुख को जाचत शर्म पाई प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पकार है कोख। कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सुहेले लोक। आन चार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक। नानक जन्म मरण पै काते मिल साधु बिन से सोक। तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझै हर कै नाम। महा संतोख होवै गुर बचनी।

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। धनासरी महला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोए ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ जाकांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। धनासरी महला पंजवा घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा करतारु हो पुजा गह कूप ते काढ लेव हो रहाउ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। धनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह। सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदारन नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्भक पूर्ण ठाकुर मेरा। धनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन किस जन ना व्यापे सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई। धनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ। अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया। धनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ। कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

बंद हर देवनहारा चरण कमल स्यों लागो नेहो नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवा काहे रे बन खोजन जाई सर्वनवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ ओह पमद ज्यो बास बस्त है मुकर माहे जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई बाहर भीतरे को जानो एहो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीनै मिटै ना भ्रम की काई तनासरी महला नौवा साधो एहो जग भरम भलाना राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ मात पिता भाई सुत बनता तां कै रस लपटाना जोगन धन प्रभता कै मद में अहनस रह देवाना दीन दयाल सदा दुख भंजन तां स्यो मन ना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नौवा तेह जोगी को जुगत ना जानो लोभ मोह माया ममता फुन जिहे घट माहे पछानो रहाओ पर निंदा उस्तत नह जाके कंचन लोह समानो हरख सोगते रह अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन दह दिस को तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक एह बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो तनासरी महला नौवा अब मैं कौन उपाउ करूं जेह बिद मन को संसा चूकै पहु निद पार परो रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच धरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो पास ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरत पछानो तब हो पतत तरो तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी परपूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर कथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिभवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे सरनाई आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज बीचारी भगत वचल पै काटन हारे हों मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताए मरन लखाई मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवै आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवै कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्ज धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया परवान ना तिस मरण ना आवन जान ठाकुर मह दास दास मह सोई जह देखा तह अवर ना कोई
गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आई जाइए रहाउ सो गुर करो जे साच दरडावै कथ कथावै शब्द मलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन महमा।

मिले मलाई, आप दिखावे आपे देखे, हाथ ना पतीजे ना बहु पेखे, कड़ पांडे जिने अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे, नाम जपे पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भए उदा।

नानक सहज पाए गुण गाय। नासरी महला पंजवां घर छेवां अष्टपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो जो जूनी आयो तेह तेह उरजायो। मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओट साध। राखो दे कर हाथ कर कृपा मिलो हर राया। अनक जन्म ब्रह्म थित नहीं पाई, करो सेवा गुर लागो चरण। गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई, रहाओ अनक अपाव करो माया को बचित धरो। मेरी मेरी करत सद ही विहावे, कोई ऐसोरे पेटे संत। मेरी लाहे सगल चिंत, ठाकुर स्यों मेरा रंग लावे। पढ़े रे सगल भेद, नह चूके मन भेद। एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा, कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत। एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा, जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए। घर को ठाकुर एक तिल ना माने, कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद। ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान, सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने। विवेकहीन देही तोहे कोई पाइये रे पुरख बधाता। पार ब्रह्म कै रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म धर्म जुगता निमुख ना हेत करता। गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै, जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत। गुरु प्रसाद को नेत्रों पेख, मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे। बगल ज्यो ध्यान लावे, माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई। प्रभु की कथा सुनाई, जिस भेटे गत होए हमारी। सो प्रसन्न गोपाल राय, काटे रे बंधन माए। गुर कै शब्द मेरा मन राता, सदा सदा आनंद। भेट्यो निरपै गोविंद, सुख नानक लादे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल जातरा, आवन जान रहे मिले सादा। रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दास पुरब सदा।

सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच न लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे भावे आनंद अन दिन हरक साचा दुख

आप पूरा नामण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच करह आवह बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पह।

0: लगातार
1: सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै भंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा धारिया जियो मोहे निर्गुण नीचे अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्स अपार नाम अमोले जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोले जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै से मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोले बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोले राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाउ हनुमान सर गरुड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजे काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजे सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना

जो होई इंद्र लोक शिव लोक कह जैबू पूछे तप कर बहुर ऐबू क्या मांगू किस थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाऊ शोभा राज बिभै बड़ियाई अंत न काहू संग सहाय पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इन्ते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अडकाई रहाऊ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई अजा मल गज गनका पतत कर्म कीने तेऊ पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण तार मूंड बलाई हमरू करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां भयो दर बांधे हाथी किन मैं पई पराई दुर्भाषा से होकर

गुण गाए, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर न आमन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया मह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या परमो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद बालहा।

आऊ ज्यो धरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हरका बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर, मोर मन मान जन को पूर्ण दीजै, हौ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाऊ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पास।

दारू करमरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सारग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रे पवन नाथ री तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी टेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सनागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साजे।

तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा धारी पाखान डुपत हर राखा जैत श्री महला चौथा हम बारिक कछु न जान है गत मेत तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा धार।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही हर मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना अन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया भुयंग ग्रस्यो है।

साकत बंद भय है माया, बिख संचह लाए ज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साकह, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिले प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तने अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करहु गुर मेलहु,

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा धार मद सूदन।

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहा जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

तजी सियान पचिंतव सारी भंग छोड्यो है त्याग रहाव। जाओ देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण पर्यो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग। जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग। जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो माया करा रहाऊ। काल जाल अर महा जंजाला।

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महा प्राणी, अंधियारे मह दीप रहाउ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम, चरण कमल अनूप, अनक बार करो ते बंदन।

या रस मह मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवां चात्रक चितवत बरसत में किरपा सिंध करुणा प्रभ धारहु हर प्रिय।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किस नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत।

जम को त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुगद लोभी फुन, करत पाप अबहारा

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जय श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आगे मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी शंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लाल

ठाकुर हो किद्दी गुण अवगुण ना पछाणी गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन तां कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

सोए जल थल मैयल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी भज सरन स्वामी सुखागामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया धार हो तिस प्राप्त नाम होए सलोक चित जे चित विया सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख सबाया शंत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किल बिख बुझी तपत अघानिया।

मन बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे। उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथिया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया, उदम करह अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक परम है परमाए, खिन एक टिकन ना पावही, जो बन गया बेतीत जर मल बैठिया, कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै, छोड़ माया चालिया, कहया ना मन है सिर खाक छन है, जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया, चरण कमल सरण आए नानक आया।

अर्थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक

जल है मन तन उर धार बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जस है जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह हब रंग मान है जिस संग ऐस्यो लाई है नेहो सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमोह बिनसे सब रोग सलोक कुटुंब जतन करन माया अनेक उदम है

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया।

का बसंत स्वर्ग लोक का है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया मन तन भये संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोग कुल सुबाया सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया।

कही है। तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया। तुर

साधू संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना।

तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहु मन लायो बिगसियो पेख रंग कुसुंभ को परग्रह जोहन जायो करन कमल सियो पाऊ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवते आयो पांच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछ राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

गीत तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहू ते छूट है, पवजल जगत तरायण, खोजत

सबाया टोडी मोहल्ला पंजवा किरपन तन मन तिल वेख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे वे उहां ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाव रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास

नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ परताप टूडी महला पंजवा स्वामी शरण परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परमगत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो।

आयोरे महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गहियो मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बात घाट तोसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोबो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीयन के दाते सदा सदा

सदा हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के।

निरंजन करते मनपनते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पय

छल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राते जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीथे रहाओ, गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपूरा भेटियो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काड लियो जन अपना, भिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही।

कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी। टूडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बक बाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

सतारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवै हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदा।

उदर मंजारा सोवे साहर सेवो मेरे मन हर अंत छावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाइय हर जप नानक नाम आधारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याई

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तू दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। रहाउ केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्वे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर भीख्या पाई। तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एह तन माया पाया प्यारी, लीतड़ा लब रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों धन सीजै।

सुहागनी वाह है, किनी बाती सहो पाई है, जो किस करे सो भला कर मानी है, हिकमत हुक्म चुकाई है।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

काया कपड़ टोक टोक होसी, हिंदू सतान संभाल सी बोला, आवन अठतर जान सतानवे, होर पी उठसी मर्द का चेला, सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाई सी सच की बेला, तलंग महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी, सच साहिब साचा खेल सब हर तनी, सलाह हो सच सब ऊपर हर तनी, जिस नाही कोई शरीक किस लेख हो गनी रहाओ, पौन पानी धरती आकाश घर मंदर हर बनी, विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गनी, तलंग महला चौथा नित निफल कर्म कमाए बफावै दुर्मतिया, जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया, ऐसा बाजी सहसार ना चेतै हर नाम, खिन मह बिनसै सब झूठ मेरे मन त्याए रामा, रहाऊ सावेला चित ना आवै जित आई कंटक काल ग्रसै, तिस नानक लए छडाई जिस कृपा कर हृदय वसै, तलंग महला पंजवा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खाक नूर करदम आलम दुनियाए, असमान जिमी दरखत आब पैदाइश खुदाई, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, रहाओ गैबान हैवान हराम कुस्तनी, मुर्दार बखोराए, दिल कब्ज कब्जा कादरो दूजक सजाए, वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए, जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बिदाए, हुआल मलूम करदं पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा, तलंग घर दूजा।

तू है तू हो मनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिसकै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

सगले आपू तेरे जन देख दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाउ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावहि मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मरन पछाना अजहू कछ बिगरियो नहीं जो प्रभ गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे तलंग महला नौवा जाग ले हो रे मना जाग ले कहां गाफल सोया जो तन उपजया संग ही सो पी संग ना होया रहाओ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

बाद वेद कतेब इफतरा पाई दिल का फिकर ना जाय टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाई बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माय ए जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी ना ही रहाओ दरोग पड़ पड़ खुशी हुए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक मियानी स्याम मूरत नाहे असमान मियानी लिहंग दरिया गुसल

नाम जपहु तब मथिया इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहै।

लिखिया अमृत हर का नाऊ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना पीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुटै ता कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई।

भोगवै भोगी होवै खाए तपिया होवै तप करे तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाउ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगै कुछ ना होवै जे सण निशान जाए तैसो जै

मंडा जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मडाए, जोग ना संगी वाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जोगत इव पाई है, गली जोग ना हुई, एक दृष्ट कर सम सर जाने।

जोगनाथ ये सिद्ध संतर भवे है, जोगनाथ तीर्थ नाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै ता सहसा टूटै, धावत वर्ज रहाई है, निचर चरै सहज धुन लागै, घर ही परचा पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, नानक जीवत आमर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाज हो सिंगी वाजे, तो निर्भउ पद पाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सूही महला पहला, कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराप भला।

हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नबला आया सब लाथे किल विक पंग हर दीना दीन दयाल प्रभु सत संग।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जिसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे भाई, तौ कत अनत साद लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौ मैं करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तन की, भगतां को मिली वडियाई। हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा, यो हर धन अग्नि तस्कर है, पानी है जमदूत है, किसे का गवाया ना जाई। हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी, जम जा गाती डंड ना लगाई। साखती पाप करके बिखिया धन संचिया, तिना एक विख नाल ना जाई। हलते विच साकत दहेले पए, हथों छुड़क गया अगे पलत साकत, हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर धन का साहु हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई। इस हर

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर खाऊं नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम।

तू करता सब किसे आप ही जान है, क्या तुद पह आख सुनाई है, बुरा भला तुद सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है, बुरा भला तुद सब किस सूझे, तुद भावे तिवें भला वह रहाउ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मनुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देव है, एक मनमुख धंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नदर करह तेहा को हुए, बिन नदरी नाही को भेख, तेरी बड़ियाई तू है जान है, सब तुदनो नित त्याई, जिस

जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त पये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारू

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै। हर की वडिआई हौ आख ना साका,

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत होई। सूही महला पंजवा, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाईऐ, साच लगै ता हुमै जाईऐ। जिसनो लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभ सदा त्याई। सूही महला पंजवा, तन सुहागन जो प्रभु।

आवै सा सुहागण अंक समावै गर्भ गहेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहण बेहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहया भरपूर जन नानक गावै देख हदूर सूही महला पंजवा ग्रहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी पिर को लोड़ी कवन कहा गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब का

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हौ तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता धन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो धन मतवंता धन जागै जे पिर बोलंता पई नरासी बहुत दिन लागी देश दसंतर मैं सगले झागे खिन रहन ना पावो बिन पग पागे हुए कृपाल प्रभ मिलह सुभागे पयो कृपाल सतसंग मलाया बूझी तपत करह पिर पाया सगल शिंगार हुन मुझ है सुहाया कहो नानक गुर भरम चकाया जह देखा तह पिर है पाई।

कह तू महली निकट ना आवे, अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता, कहो नानक प्रभ बिनो सनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त की जय, दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई, रहाउ दूजा सूही महला पंजवां, बुरे काम को ऊठ खलोया।

लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा कट कट अंतर तुम्हें बसारी सगल समगरी सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण आधारी तुम ही पेख पेख मन बिगसारी रहा अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारी ओट गही अब साध संगारी अगम अगोचर अलख अपारी नानक सिमरै दिन रै नारी। सूही महला पंजवा कवन काज माया वड्याई जा कहो बिन सतबार ना काई इह सुपना सोवत नहीं जानै अचेत व्यवस्था मह लपटानै रहाउ महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊच ते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा दूसर

देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बाण।

पंजवा जीवत मरै बुझै प्रभ सोई तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरियै मिल साधु हर नाम उच्चरियै रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किछ करै सोई भल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी।

गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ। भव जल डूबत सतगुर काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। सतगुर की रेन वड भागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए। आठ पैर हर हर जस गाई।

केकिल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवां।

पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभु चरण कमल रे दमाही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताकी बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के पै मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छाए लियो जन अपना उर्ज पयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए हर चरण गहे नानक सरनाए सूही महला पंजवा दीन छाए दुनी जो लाए दुही सराई खुनामी कहाई ज्योत सुभावै सो परवान अपनी कुदरत आपे जान रहाओ सच्चा धर्म पुन भला कराई दीन कै तो सह दुनी ना जाई सर्व निरंतर को जागे जित जित लाया तित तित को लागे अगमे अगोचर सत साहिब मेरा नानक बोलै बुलाया तेरा सूई महला पंजवा प्रातः काल हर नाम उचारी ईत कूत की ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाव प्रभ अविनाशी रैन दिन गाऊ जीवत मरत निश्चल पावह थाऊ सो साहु सेव जित तोत ना आवे खात खर्चत सुख आनंद विहावै

राम आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सूही महला पंजवां बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंध नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत परन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

आस हर सेती राते राम रसायणे अन दिन माते बाहां पकड़ प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवां संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी।

एको नाम मन मह प्रवेशा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर सरनाई सुही महला पंजवा कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूर्ण कृपाला रहा।

अल्ला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराई रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जिह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई।

रहाउ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया पर को हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहोर ना फिरिया।

सरनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महादुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

जल थल मही अल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर सिउ

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ। अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला। सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छाई। अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा। नानक दया करी सुख दाता केटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवा जब कसना सीओ तब क्या करता कमन कर्म कर आया।

सुहावी जित तुमरे द्वार आया नानक कहो प्रभ पये कृपाला सतगुर पूरा पाया सूही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाए दयाल हो वह जिस ऊपर करती।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंत पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

जन्म बिछरत दुख पाया कर गैले हो प्रीतम प्रबराया पणत नानक सहो है पी होसी जय पावे प्यारा तैर वेसी सूही महला पहला कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़ड़िया दिन चार जी हो विण नावै भ्रम भुलिया।

ये भवै है बिन भागा धन नाही जियो अवगण मुठी जे फिर है बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उ

ना बूझह आपना से पशुआ से ढोर जियो नित नित खुशियां मन करी नित नित मंगै सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगह दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै तित तन कैसी।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अन्न को की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पलाया

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना, मन मुख भरम भलाना ना तिस रंग है, मरसी होए वडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हो मैं आवै जाए भरम भलावना रहाओ, तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है, मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है, तू कर कर वेखह आप देहे सो पाई है, तू देखह थाप उथाप दर बिनाई है, देही होवग खाक पमन उड़ाई है, एहो कित्ते कर औताक महल ना पाई है, देहो दीवी अंध कोर कप महाई है, गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है, गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दी पाई है, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है, रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मलाए जे तुद पाई है, सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है, ज्यो राखह कृपा धार तिवै सुख पाई है, मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी, रहूं साहिब की टेक ना मोह मोहनी रहाओ, जह देखो तह नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना, जन्मत ही दुख

तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाम ही ते सब किश होआ बिन सतगुरु नाम ना जापै गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदले जन्म गवाया कीन सनाही आपै गुरु

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

तृष्णा यज्ञ बुझाय गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहे आसमाय हर का नाम सत कर जाने गुर कै

जो मर खाक थी वाह मेरे साहिबा वाह गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन तिसना भूख न उतरे अन दिन जलत फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुग्ध करन मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन ए मन जैसा सेवह तैसा हुवह तेहे कर्म कमाए।

कोई अमृत भरे भरपूर है, ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड भागी जे ओना मिल रहे, अन बिन नाम लेन, देसी रिजक संवाहे, जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप तनी, सो सच तेरे नाल है, गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए, सो प्रभ सदा संभाल, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलया जाए,

साथ रखा उर तार मिलिया हुए ना विछड़े गुर कै हेत प्यार फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार मनमुख मन न भिजई आत्मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आई है अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया शिंगार सच्चा साहु सच्चे बन जारी उते कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुख ही माही पचन हम मैला जग फिरै।

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाव गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होए लिखिया गुर भाणा मन लेन वडभागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेख हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुखे को बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुरचरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देख।

आई। जे गुर छिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर बड़े आई। गुरमुख बोले है सो थाए पाए, मनमुख किस थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक अपाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करहो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जात कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा।

सुतियां गुर सलाहिया उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए, जिस परापत सोल है गुर चरणी लागे आए।

पुरख सुजान सतगुर मीत मलाया मैं सदा सदा तेरा तान सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मैं रहया समाय राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास नानक दरगाह मन्या गुरपुरे साबास राग सूही अष्टपदिया महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर्ज रहयो बिख्या कै संगा मनह व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाईए पूर्ण परमेश्वर रहाउ मोह मगन में रहया व्यापे अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे।

प्रभ दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जमदूत ना भेटन जीवन रूप अनूप दयाला रमन गुणा कटिए जम जाला अमृत नाम रसन नित जापै रोग रूप माया ना व्यापै जप गोविंद संगी सब तारी पोहत नाही पंच बटवारी मन बच क्रम प्रभ एक त्याई

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया घर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिथिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो।

मन बुठा निरंकार जियो ता का अंत न पाई, ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा, जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व मैं, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो, राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां का।

मन्योहो आप बदानिया एक पूरी नगर निहाल देह दर्श रंग मानिया जय दिथे मन धीरी है किले विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे हुए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बीचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते बिन बूजे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरना ही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हौ क्यों सहो रावण जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो जिन्नी सखी सहो रावया।

क्या क्या किन्ना तेरा नाऊ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हौ सद कुरबान है तेरे जाऊ जियो सोना रूपा रंगला मोती तै मानिक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यो लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरा आस जियो हौ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरनिया बग बेठे आए जियो सा तन चली सोहरे क्या मुंह देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल किया भुली वाकड़ी आस जियो तै सह नालो मुतीस दुखा कू त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागन।

आए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो, एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देव।

चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

बाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आई घर आए अड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रात अवगण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार वसी पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाई नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है माड़ी है तेहो लोआ सिर ताजा राम ओम विष्णु पई देख गुणा अनहद शब्द अगा

हर नाम रतन परवानो पात मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनासी।

पर कर जाही, साज नराते सच के संगे मन माही, मन माही साजन करह रलिया, कर्म धर्म सबाया, अठ तट तीर्थ पुन पूजा, नाम साचा पहाया, आप साजे थाप वेख तिसे पाना पाया, साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया, अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने, आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने, क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली गिणना महर के कसना सूजे, अंध बूढ़ो धंधली दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती, राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जे थी है, सब देश पर आया किस पै खोलो गंथड़ी, दुखी भर आया, दुखी भर आया जगत सबाया।

भिक्षु ने ना गुर शब्द सुनाया, मन परदेसी जेती है, सब देश पराया, गुर महली घर अपने सो भरपुर लीना, सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना, शब्दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे, आप करता करे सोई प्रभ आप अंत नरंतरे, गुर शब्द मेला तां सुहेला पा जंत अनहद बीना।

आवै आप अपुल ना भुले जय जयकार करह तुद भाव है गुर कै शब्द अमुल्य हीनो नीच करो बेनंती।

राग सूही संत महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोह लड़ा हर त्याहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरे अपने विटोह जिन कार्य सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापहु सुख फल हर जन पावहु नानक कह सुनो जन भाई सुख सोह लड़ा हर त्याहु सुन हर गुण पीने सहज सुपाए गुरमत सहजे नाम त्याय जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पहु भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी तेने अन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाए जुग मह राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए।

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख ना लागे आई, दह दिस पूज होए हर जन की, जो हर हर नाम त्याई, नानक

भगत करहें दिन राती, करगी मह बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखहें सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम संभाले, मन मुख भगत करहें बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत ना होई राम, हमें माया रोग व्यापे, मर जन्म है दुख होई राम, मर जन्म है दुख होई, दूजे पाए परज बिगोई, बिन गुर तत ना जानिया, भगत विहूणा सब जग भरमिया, अंत गया पछतानिया, कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वडियाई, दूजे पाए पत खोई, भगतां कै कर कारज साचा, हर गुण

निवासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोले जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच बखाने राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंत रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हम मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे, शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे, दिन राती अपना साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता।

गुरमति घट चानण होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल होमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहो अन दिन शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए हर गुण गावह नारी अन दिन भगत करह गुर आग्या सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसया घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहिला हर कर किरपा घर आए भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर

सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अन दिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गुआए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती,

हर मन तनोह गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

हर धूड देव हो मैं पूरे गुर की। हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए। निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी। गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुरु पूरा आराध हो सब किलविख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी।

अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिवलाई मन चिंदिया फल।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलिया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाईऐ, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए। पए पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा, हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी, हर नाम प्यारे शब्द निसतारी। अज्ञान अंधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया, जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहण आया, व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हों मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया। बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम। सतगुर पाए चलो हो, जीवत्या इव मरिया राम। जीवत्या मरिया पौ जल तरिया, गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया वड भागी, सच नाम लिव लावै। मत परगास भई मन मानिया, राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनों प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुर है, मैं मेले प्रभ गुण तासे। तन तन गुरु वड पुरख है, मैं दसे हर साबासे। वड भागी हर पाया, जन नानक नाम बगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आवहो चिरी विछुनिया, मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया, ज्यो जल बिन मीन मराहा। वड भागी हर त्याया, जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमिया, मन मुख परम भुलाया। नित आसा मन चितवै, मन तृष्णा भूख लगाया। अनता धन धर दबिया, फिर बिख भालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू, बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई, मन आसा चिंत वसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारिया। वड भागी प्रभ आए मिल, जन नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा, मारे हिस वे जन हों मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया, दे कंचन वे वन्निया। इन हों मैं मार विगुतिया, मोह माया वे सब कालखा। इन मनमुख मूड सजुतिया, जन नानक गुरमुख उबरे। गुर शब्दी हों मैं छुटिया, वास्याने हो वे जन। इस मन को मन वासे ज्यों नित पौंदिया, दुख रहन वे विहानिया। नित आसा आस करेंदिया, गुर पाया वे संत जनो। मन आस पूरी हर चौधिया, जन नानक प्रव देहो मती। छड आसा नित सुख सौंदिया, सा तन आसा चित करे राम राजिया। हर प्रभ सेजड़ी है आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है।

अत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगन सी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन कृपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाइय भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन भग

गर्भ गवानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिय भौजल तरिय जे पीवै कर्म लिखियासा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानो नानक शरण पया हर।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सब कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे पौजल पार उतारा आदि जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

तैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित

मनुख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आमन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हो ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरडाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गैर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

जीवन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया, जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी, ठाकुर सिउ मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खुला। कहो नानक हौ निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा, साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम, मात पिता भाई सुत बंदप। जी प्राण मन पाणा राम, जियो पिंड सब तिसका दिया। सर्ब गुणा पर पूरे, अंतर जामी सो प्रभ मेरा। सर्ब रहे पर पूरे, ता की सरन सर्ब सुख पाए। हुए सर्ब कल्याण, सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे। नानक सद कुर्बाना, ऐसा गुर वड भागी पाईए। जित मिलिया प्रभ जापै राम, जन्म जन्म के किल विख उतर है। हर संत धूड़ी नित नापै राम, हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आईए। बहुड़ जोन ना आईए, गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे। मन चिंदिया फल पाईए, हर गुण नित गाए नाम ते आए। फिर

हर गुण निधि हर संतन कह वासे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी। जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल कल मही अल पूरन।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अवनासी।

आवी काल सुहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर।

आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावे है स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे है सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

जाने अवगण को ना चितारी पतत पावन हर बिरद सदाई एक तिल नहीं भन्ने काली घट घट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मद प्रभ रविया जल पल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पवज

प्राण आधार गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम विचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हम मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाई धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वड भागी हर हर गाया।

0: हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्या
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए।

सत मोल रस भोजन भाव करे तन मन सौंपे कंत को तौ नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजै पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हौ मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ भाव सब तिसदा सो सच वरत।

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा, काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी, सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया, रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती, किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया, कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले, सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया।

देवहु जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाउ ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताली पासा जो जन जान भजै अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारै ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सह की सार सुहागण जान ताज अभमान सुख रलिया मान तन मन दे न अंतर राख अवरा देख न सुने अपाख सो कत जान पीर पराई जा कै अंतर दर्द ना पाई रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी जिन नाहा निरंतर भगत ना की।

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरह जाली, बिरह बहून कतह सुख पाई।

मैं मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

अलख अपेव रहाव, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसे वे जात ना हुए, एक एक को नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज त्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरे हो मरूं दुखाली, सास ग्रास जपों अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जानी गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेक चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिउ, जित हुण खसम

हे जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मनमुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाउ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाए अन दिन लागे सहज ध्याना रहाउ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अब मानना जब अपनी जोत खिंच

ताई चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाई मंगल नारी गाव है आई मिल प्रीतम सदा सुख पाई हों तिन बलिहार है जिन हर मन बसाई हर जन को मिलिया सुख पाइये हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे क्याई हर जीव आप वसै मन आई आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाई निज कर वासा हर गुण गाई रंग चलूले हर रस पाई एहो रंग कदे न उतरे साच समाई अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाई पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हों मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरन को समसर वेख बहुड़ ना मरे ना जम पेख घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम इस जुग मह वडे आई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लावहु क्यों तरियै बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावै पार रहाउ पवन चलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हमें पचे दीपक देख पतंग।

मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल जिन चाख्या तिस आया साध ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बिलावल महला पंजवा सर्ब कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रवे आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवा सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुरपार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिने अपना प्रभ जाता हर नाम आराध है नाम बखान है हर नामे ही मन राता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा वड भागी से कांडिय है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु अमृत नाम आराध्य निर्मल मन हुए परगासु जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूके जम की कानी तिना पर

पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकत ही काई साधा दासी थियो नानक से दर सोभा वंते जो प्रभ अपने कियो हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम त्याया जाए बसो वडभागणी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरन ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए प्रेम बिछोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याईए दृष्ट धार मन बेदिया प्यारे रतड़े सहज सुपाए सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइय।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आप हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नदान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ, सगल सरंजाम करे प्रभ आपी। भय मनोरथ सो प्रभ जापी, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी भई सिमर सिमर बेधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुरे आणिया, बिलावल महला पंजवा। सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव, हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खवार साख नर थीवे, राम नाम हुआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचह कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरे, कहो नानक जपह जन नाम। ताके निकट न आवे जाम, राग बुलावल महला पंजवा। कर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसर ना काहू बेरे, बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय त्याय, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव, ताप पाप संताप बनासे। हर सिमरत किल विख सब नासे, आनंद करहु मिल सुंदर नारी। गुर नानक मेरी पैज सुवारी, बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रोह मद माता, बंधन बांधिया अत बिकराल। दिन दिन सिजत बकार करत औद, फाही फाथा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागर अत भारी। उधरहु साधु संगर वाला रहाव, प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी। जियो पिंड सब तुमरा माल, भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर। नानक के प्रभ सदा कृपाल, बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिरद सम्हारिया। साध जना हुए कृपाला, बिगसे सब परवारिया। कारज सतगुर आप सुवारिया, वड्डी आर जा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव, वण तिण त्रे भवन हरिया होए। सगले जी साधारिया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूर्ण इच्छ पुजारिया, बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवां मन मैं सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवां रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माही त्याई नानक गुरपुर।

करतार, नानक दास तां की सरनाई, जा को शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग, पार ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाउ, सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग, गुण गावु नित राम के, एह अवखद जोग, आए बसो कर देश मह, एह भले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊठ सधारे छत्रपत, संतन कै ख्याल रहाउ, हम बुद्ध को बिनसना, एह तुर की ताल, बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल, सत बचन साधु कह, नित जपह गोपाल, सिमर सिमर नानक तरी, हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाद आनंद सुख, पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ, अमृत गुण चीन रहाउ, जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया, जा का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास, सदा सदा वडियाईया, नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा। घर पंजवा चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू घर बार, बिन सतबार ना लाग गई, ज्यो कागद गुंदार, सुन मेरी मनसा मन माहे, सत देख बीचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी, ताज गए घर बार, रहाउ, जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लग है गावार, कहां सुपाई मीत है, देख नैन पसार, एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बिलावल महला पंजवा। लोकन किया वड़ियाईया, बैसंतर पागों, ज्यो मिले प्यारा अपना, ते बोल करागो, जो प्रभ जियो दयाल हुए, तो भगती लागो, लपट रहे मन बासना, गुर मिल एह त्यागो, रहाउ, करो बेनती अत घणी, एहो जियो हमागो, अर्थ आन सब वारिया, प्रिय निमक सुहागो, पंच संग गुरते छुटे, दुख अर रागो, हृदय परगास प्रगट भया, निसबासर जागो, सरल सुहागन आया, जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया, तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा। लाल रंग तिस को लगा, जिसके वड भागा, मैला कदे ना होई, नह लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाईया, मिलिया सुख पाए, सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बलाल महला पंजवा, राख हो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उदहारे। बलावन महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावन महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे। बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर से हो अपना काहे फिर हो अभागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उधार न साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। लावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है, तुझ बिन कछ नाही प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड जाए। तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाव हो तित तित लग है, सियानप सब जाली जात कत तुम भरपूर हो। मेरे दीन दयाली सब किस तुम ते मांगना वड भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना, प्रभ से ती रंग रातिया तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी देख साध दर्शना। बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल, राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा इस चरणी लाग, माया तारी शत्रपत तिन छोडो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान। भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है अद विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे। सब किस तुम ही ते होवा आप बनत बनाई, दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो, पाम मनोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास नह विसरे अनकत है ना तावो, सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग तिस भेटे हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया। बलावल महला पंजवा
माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन मैं ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आनस्यो सोरलिय खे रहा सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो तज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीये कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुर ते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दासरा नानक कर ले बलावल महला पंजवां एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाउ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमारे करनहार जो कर रहया साई वड्याई गुरपूरे अपदेसिया सुख खसम रजाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता बलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंधकूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए।

तरे कुल कटंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सर्ब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक करिए साध संग हर हर गुण गाव। बलावन महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा, खर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस स्यो तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन सरनागति, जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना, प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया, सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत, हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा। रहाउ जी जंत सब सुख बसे, सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन, जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत।

पार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत अराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवा दुपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे तां का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ तां की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कै जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग तांते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बांचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है। साध साध मुखते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल पए हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहे हो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद में पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ਭਉ ਨਾਠਾ, ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ। ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ

न रखण हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

सुख दाते, मिल संगत हर गुण गाए, रसना अगह अगह गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख भंजन।

नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरत।

सोई पल हमरै पेख नानक सुख चरनारै बलावल महला पंजवां सुनियत प्रभ तौ सगल उदाहरण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मनह बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जतीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बदारन इनते काढ़ ले हो मेरे स्वामी।

मन पूर रही दिन अर रात रहाउ कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रत्न रत्ना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाती।

पर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो।

बिस्थारी पंखी ज्यों कहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाउ सहज समायो गुर है बतायु रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाउ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई बिलावल।

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रह समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बलावल महला पंजवां, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बलावल महला पंजवां, संत सरन संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाऊ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बुलावल महला पंजवां, मन क्या कहता हों क्या कहता। जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आगे क्या कहता रहाऊ। अनबोले को तू ही पछान है, जो जीन मह होता। रे मन काए कहां लो डह कहें, जो पेखत ही संग सुनता। ऐसो जान भये मन आनंद, आन ना बियो करता। कहो नानक गुर भये।

करह करावह मुँह कर पावह। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ, काच बिहाजन कंचन छाडन। बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा। बिखिया मह लपटाए जरे।

फल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहूं ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ परताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही।

जरा मरा कछ दुख न व्यापै, आगै दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाईऐ एहो निदान। जन्म मरण की कटियै फासी, साची

पंजवां अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरल सम्राथ अकथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख है अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीश इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

रहाउ। काड कुठार कसम सिर काटिया, हिन मह हुए गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो, सो छोड़ गया सब भाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव। आपे आप वरतै स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाउ आद मद प्रभ अंत स्वामी।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचन पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगुण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन स गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए।

आई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहया पर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझह चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बलावन महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बकार निस भोर भया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बाहा पकर प्रभ काढ लया बलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे झख मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाओ गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को राखन हारा नानक दा

राखी भै भंजनी ऊपर करते मान भई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढ़े शान सुख सहज आनंद कनेरे नानक जीवै हर गुण है बखान बलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भये कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु भये निहाल रहाउ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले भये रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल घर आए।

जन चर रज मुख माथै लागी आसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाहीं कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुम

नुहाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जीओ नदर निहाल बिलावल महला पंजवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाव रंक तेरा ओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लात निद निधान।

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतस पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत धारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख

मन तन रब रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरे हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औध बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अर चिंत बरानी साध है शरण पाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए। कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो पर

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस घूटी है।

नवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावै मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावै कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावै बलावल महला नौवा जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाओ तीर्थ करै व्रत फुन राखै नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानो साच कहत मैं जाको।

पछानू भगत हीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर यह भेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभु के गुण गावे बला।

देखै सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई बिन भै पै भगत ना हुई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस।

बिन रसरा ते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नाम भूले थाओ ना कोई, मन माया बंदेओ सर जाल, घट घट व्याप रहो बिख नाल, जो आंजै सो दिसै काल, कारज सीधो हृदय संभाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, मनमुख हों मैं पत गवाई, आपे करतै भगत कराई, गुरमुख आपे दे वडे आई, रैन अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत, वेद पकारै भगत सरोत, सुन सुन मानै वेखै जोत, शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं, गुरमुख शांत उत्तम करामं, मनमुख जोनी दुख सहामं।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविया अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले है वड्डी।

गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा अष्टपदिया घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप खाए हों मेटे, अन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति जोत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावे। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ, एक गिरहो दस द्वार है जाकी। अहनस तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे। मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया। जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने। गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जगाती नेड़ ना आवे। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर जस कहते अंत ना लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्तै। श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने। रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे। तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृष्ट सब सम कर जाने। नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया, राम नाम है जोत सबाई। गुरमुख आपे लख लखैया, नानक दीन दयाल भए हैं। भगत पाए हर नाम समैया, बलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्यावहु, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया। जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, सरल परे से ही जन उबरे। ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ, पार अठारह मह चंदन उत्तम। चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए। मन अभमान बिछड़ दूर गईया, हर गत मित करता आपे जाने। सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे। जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे। सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी। मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया, परम बैराग नित नित हर त्याई। मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए। हर पार न पावे परे परैया, शास्त्र वेद पुराण पकार है। धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते। लोभ लहर नाभ भार बढ़ैया, नाम जपहो नामे गत पावहु। सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हम मैं जाए ता निर्मल होवे। गुरमुख परचै परम पद पैया, इहो जग वर्ण रूप सब तेरा। जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह। जित पावै तित राहि चलैया, बलावल महला चौथा। गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सतपुर खैया। राम नाम मेरे प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया। जान की टेक हर नाम टिकैया।

सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाऊं सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन, चढ़ नाव संत उदार, पै तरे सागर पार, मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत, तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार, प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनद पूर्ण साध, नह डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत, तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जम ना पेख नैन, सुन मोहे अनहत बैन, हर सरन सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल, हर निगम लह ना पेव, नित करह मुन जन सेव, दुख दीन दर्द निवार, जाकी महा बिखड़ी कार, ताकी मित न जाने कोए, जल थल मही अल सोए, कर बंदना लख बार, थक परियो प्रभ दरबार, प्रभ करहो साधु तूर, नानक मन सापूर, बलाव महला पंजवा, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार, गह चरण साधु संग, मन मिष्ट हर हर रंग, कर दया ले हो नर लाए, नानका नाम त्याई।

ज्यों महा खुदियारथ भोग ज्यों मात पूतहि हेत हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यों ग्रह

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवह क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा।

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाउ किस मैं मनुआ रहया लिबलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ।

पत खोए डर मह घर घर मह डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझ हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

भिनस बनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा ममता जाल ते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल मोहल्ला तीजा वार सत कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदत वार आद पुरख है सोई आपे वरतै अवर ना कोई।

आप अपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

वार वार दिन सनहण तिमें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै मस

माय नानक गुरमुख वेखै हदूर मेरा प्रभ सद रहया भरपूर एक सेवक एक भरम पलाय आपे करे हरे आप।

मुग्ध ग्वार नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार धरी हर लिवलाई राम लिवलाई हर स्यो रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंदन वेल सुंदर देख फिर साधारिया।

शब्द जोत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो जोत सबाएड़िए त्रिभवन सारे राम घट घट रव रहिया अलख अपारे राम अलख अपार अपार साचा आप मार मलाई है हम मैं ममता लोभ जालो हो शब्द मैल चुकाई है दर जाए दर्शन करी पाणे तार तार नहारिया हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उरतारिया बलावल महला पहला मैं मन चाऊ घणा साच बगासी राम मोही प्रेम परे प्रभ अबनासी राम अवगतो हर नाथ नाथ है तिसे भावे सो थीऐ कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जीऐ मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे पेख पवनी हठ ना जाना नानका सच गह रहे पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम नवहान नव धन शब्द जागी अपने पिर पाणिया तज कूड़ कपत सुभाऊ दूजा चाकरी लोकानिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पाणिया जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन्याड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी को विरला गुरमुख बूजे ओ शब्द समाए आप गवाए त्रे पवन सोजी सूजे रह अतीत परंपर राता साच मन गुण सारिया ओह पूर रहिया सर्ब ठाई नानका उरतारिया महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मन मार रीजै शब्द सीजै त्रै लोक नाथ पछाणे मन डीक डोल ना जाए कतही अपना पिर जाने।

मन सुख सुमाना राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है।

राम सफल जन्म हर पाया, नानक प्रभ की ना राम। बलावल महला चौथा सलोक, हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो। मन वसै बड़ भाग, गुर पूरे वेखा लिया, नानक।

आया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिव लाई राम हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुर

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिए पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ तह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

राम मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अन दिन वजह वाजे अहंग मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरन स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अन दिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलड़ियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइए नह लज्जाइए चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मरण मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक।

वास आहो सखी असी तिरका मंगल गाव है तज मान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तज मान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

चित्तर चंचल अनक पाव दिखावे हुए तीठ मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीरे बर्त पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु।

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तुही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

हम नानक प्रभ शरणागति जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम वड भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्हड़े अप

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइय मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजै पाए बलावल ना होवे मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुगे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल है सत गुर पाई जिनकै हिरदय हर वसै हम रूप गुआई गुण रवह गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाई इस जुग मह विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेत लाई नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाय महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द न लगो पाओ हम रोग कमावना अत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाय नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाई पौड़ी सब वडियाईयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याई जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाई जिस पूर्व हो लिखिया सो हर गुण गाई सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मलाई सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाई गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाई हर रस पी संतोख होआ सच वसिया मन आई सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाई सचो दह दिस पसरिया गुर कै सहज सुभाई नानक जिने अंदर सच है से जन शपहना किसे देश पाई महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा कहो नजर करे मानस ते देवते भये सच्ची भगत जिस दे हम मैं मार मलायन गुर कै शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदय पाई निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन उना पराया भला ना सुखाई क्या होवै किसे ही की झख मारी जा सच्चे स्यों बणियाई जे गल करते पावे सा नित नित चढ़े सवाई सब चख चख।

फित की है सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है जे हर प्रभ बख्श करे उपावा सिर उपाऊ है नाम प्राप्त होए अंदर सी।

गुणी निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किच हर करावे सो ओह कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कर सतगुर अगै।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान न लागे। दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सत गुर भेटीऐ, तां सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया। गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरहै गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार। भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार। दूजै पाए सूते कबहू ना जागहै, माया मोह प्यार। नाम ना चेतै शब्द ना विचार है, इहो मनमुख का विचार। हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया। नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा। होर त हट ना वथ ना विसाहु, भगत जना को सन्मुख होवै। सो हर रास लए वेमो।

आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे, आवह ना जाहे ना कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र

कियो बौरा, सतगुर जार गयो भ्रम मोरा। मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई। सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक जाने। अबह ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामै रंग राता। बलावल ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा। अजो विकार ना छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पवजल निद भारी। राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी रहाऊ। बिखै बिखै की बासना, तजी नह जाई। अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया, किश किया ना नीका। एहो जियरा निर्मूल को, कौडी लग मीका। कहो कबीर मेरे।

राम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नाख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां ले उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा रहाओ तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्हें नवाज साज हम किए तिसे बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओहो सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत काल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी सरवनन सुनियत सुजस।

त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी जिस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतम जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करहु मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी।

कोई बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाव ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा, ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निःफल सब काल गवासा।

रूख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है अवरा पह कह मन लाज मरासा जो संसार के कटम मित्र भाई दिसह मन मेरे ते सब अपने स्वाय मलासा जित दिन उनका सुहाओ होए न आवै तित दिन नेड़े को ना टुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुद उपकरे दुख सखासा इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो इहो छूटण का आसा चा परवासा गोंड महला चौथा हर सिमरत सदा हुए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना जैसे सकत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना जहां कहां तुझ राखै सब ठाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाउ जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी इनके चरण मलहो हर दसना शब्द पिशान राम रस पाव हो ओह उत्तम संत भयो बड बडना किस जन की वड्याई हर आप वधाई ओह कटै ना किसे की कटाई एक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक कहो हर दान एक दीजै नित बसह हृदय हरी मोहे चरना गोंड महला चौथा जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइयै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइयै, मेरे मन हर जप हर नित पड़ैयै, हर बिन को मार्ग वाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ैयै रहाउ, हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरइयै, हर एको बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखइयै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरइयै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइयै, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धियइयै, जन नानक सो हर नाल है तेरै, हर सदा धियाए तू तुद ले छडइयै, गोंड महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपतै, ज्यों

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड़ लभाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल दीन दुख भंजन,

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजे निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत परलो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याए आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमख जस गाओ बाल सिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवां।

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्व पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाऊ, अन बिन जपो गुरु गुर नाऊ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मह गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी,

संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूर्ण काम रहाओ। राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए,

नानक दास गोंड महला पंजवां हुन को खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करह सलाम लूट ले साकत पत खोह सात जना पग मल मल धोह पंच पूत जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख कीनो ठाऊं जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

नानक निस्तरीय गोंड महला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ तज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वडभाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

पातार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिए संसार वडभागी पाइए पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

गूंढ महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोई जो निंदै तिसका पतन होए जिस कौ राखै सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया विसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक कौ उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गोंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे अधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिंद नारायण की

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जां को राखे रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै निरंकार।

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवनहार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा।

लागै, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पय, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभिमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कहिए। मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झख मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले। भरिया हुए सो कबहु ना डोले गोंड। नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पांच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है तन मह हर है सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो। हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे। या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट इसे तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद। गोंड ना एहो मानस ना एहो देव ना एहो जति कहा वैसे ओ। ना एहो जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत ना को उपाई रहाओ। ना एहो गिरही ना ओदासी ना एहो राज ना भीख मगासी। ना इस पिंड ना रख तू राती ना एहो ब्राह्मण ना एहो खाती। ना एहो तपा कहावै सेख ना एहो जीवै ना मरता देख। इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस। गोंड टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान। कूच बचारे पुए फाल
ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ਰਹਾਓ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੀ ਇਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦੋਏ ਬਾਟ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੱਧ ਪੋਥੀ ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨਕੋ ਰੋਟੀ।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहां भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसे संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सोभा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वाके अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यो सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तऊ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपरे तोई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारह सोदे पांच पलीतह कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जिन ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन कै साद रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग नीका वन अन्न बाहर जो नर हुए है तीन भवन में अपनी खोए है छोड़ अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में भक्ते दूधा तारी गुप्ती खाव है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेध जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुज है हर कीर्त नामा अपने राम है भजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस भव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाउ ज्यो मीना हिरै पशुआरा सोना गढ़ते हिरै सुनारा ज्यो बिखी हिरै परनारी कौडा डारते हिरै जुआरी।

तरपे न जानो बाप बीठला बाह दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अविलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफ है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूतला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदलहे की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गनका तरी सो हर नैनोह की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपत सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरों पूत सीतला तावै खर बाहन उहशार उड़ावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करै नर सह नार हुए अवतरै तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा इउं कह गीता बलावल गोंड आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाऊं रे रहाउ पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी लेकर ठेंगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेविया जह देहरा नाम सीत राग गोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार सोई मकंद मुक्त का दाता सोई मकंद हमरा पित माता जीवत मकंदे मर्त मकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाउ मकंद मकंद हमारे प्राणं जप मकंद मस्तक निशानं सेव मकंद करे बैरागी सोई मकंद दुर्बल धन लादी एक मकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मेटी जात हुए दरबार तुही मकंद जोग जोग तार उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास कहो रविदास अब तृष्णा चूकी जप मकंद सेवा ताहू की गोंड जे हो अठ सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पुजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै
साधका निंदक कैसे तरै, सर पर जानुहु नरक ही परै, रहाउ जेहु ग्रहण करै कुल खेत, अर्पै नार शिंगार समेत, सगले सिमरत सर्वनी सुनै, करै निंद कवनै नहीं गुनै, जेहु अनक प्रसाद करावे, भूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सौंडै, करै निंद बहुजोनी हांडै, निंदा कहां करो संसारा, निंदक का प्रगट पाहारा, निंदक सोद साध बिचारिया, कहो रवदास पापी नरक सधारिया, जोड़ राम कली महला पहला कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जपमाली, लागे तिसे त्याना, कब ही किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गति, हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते, रहाउ कबहू जी अड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले, लोभी जी अड़ा थिरना रहत है, चारे कुंडा पाले, मरन लखाए मंडल मह आए, जीवन साजह माई, एक चले हम देखह स्वामी, पाहे बलंती आई, ना किसी का मीत, ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जेतू देव है, अंते हुए सखाई, राम कली महला पहला, सर्ब ज्योत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नरहरी, जीवन तलब नवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाउ, जह पीतर घट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही, आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहया परपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तह रहया समाए, अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेहगा प्राणी, राम कली महला पहला, जित दर वस है कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरियै, जीवत्यां नह मरियै रहाउ, दुख दरवाजा रोह रखवाला, आस अंदेसा दोए पट जड़ी, माया जल खाई पानी घर बांधिया, सत कै आसन पुरख रह, किंते नामा अंत ना जानिया, तुम सर नाही अवर हरे, ऊचा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह नरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरियै, जीवत्यां इयों मरियै, रहाउ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने, पत झोड़ी मंगण कै ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागै, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागै रहाउ, पानी प्राण पवन बंद राखी, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, पीर पुरुष बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिल है जन नानक, तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला,
सुन मां शिंदरा नानक बोलै वसगत पंच करे नह डोलै ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरै सगले कुल तारे सो अवधूत ऐसी मत पावै अहंस सुन समाध समावै रहाउ भिख्या पाए भगत पै चलै हुऐ सो तृप्त संतोख अमुलै ध्यान रूप होए आसन पावै।

निरास बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आए निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाऊ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचै शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइय एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल ऐथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापै ज्यो संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाऊ साच भेट बैसन को थाऊ सत संतोख होए अरदास ता सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोई ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे भाउ पवे तित आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्ला दर कियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकी गातमित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हो मैं विचो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मलाया राम कली महला पहला साधन भोजन मांगत भागे खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज घर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाऊ पंच बैल गडिया देह धारी राम कला निबह पत सारी घर टूटी गाडो सिर भार लकड़ी बिखर जरी मंज भार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बियोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपै निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन मह मुंदरा हर गुर सरना नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सतजुग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सतजुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझै को बीचार जुग चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागै सो मुक्त होवै गुर बिन नाम ना पावै कोई रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर पाखंड वर्त्या हर जानन दूर गुरमुख बूझै सो जी होई अंतर नाम वसै सुख होई द्वापर दूजै दुबदा होई परम पलानी जानह दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रहाए एक पैर चलै माया मोह वधाए माया मोह अत गुबार सतगुर भेटै नाम उधार सब जुग मह साचा एको सोई सब मह सच दूजा नहीं कोई साची कीरत सच सुख होई गुरमुख नाम बखाणै कोई सब जुग मह नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझै कोई हर नाम त्याए भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वडियाई होई राम कली महला चौथा घर पहला

सुख होई, जो इच्छ हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाऊ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निद पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तह हर हर हर रस भोगनी रहाउ सुर्ग पवित्रा मित पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी नह सिर सकती जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कहन ना जाई बस्त अगोचर भाई रहाउ मोल नाही कछ करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को सोजी नाही जो पेख है किस बाण आवे।

पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीत न आवस दूजी बातां सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवां तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

वा तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग सूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत

कोई बादशाह भिसत कोई सुरगिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा, एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई, रोव नहार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

रहाउ रथ में वसिया सत का खेड़ा तृतीय मह किस भया दुतेड़ा द्वितीया अर्धो अर्ध समाया एक रहया ता एक दिखाया एक है सूत परोए मणिए गांठी भिन भिन भिन भिन तनिए फिरती माला बहु विद पाए खिंचया सूत ता आई थाए चहो मह एक है मत है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इउं किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाउ दूजा राम।

तन मन सी तले अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाओ

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

सर्व प्रतिपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे।

जिसा सहाई होए भगवान, अनक जतन उआके सरंजाम रहाउ, करता राखे कीता कौन, कीरी जीतो सगला भवन, बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण, बल बल जाइए ता के चरण, तिन्ही किया जप तप ध्यान,

परगास गहर गंभीर अपार गुणतास जी जंत सगले प्रतपाल नानक संत है देख निहाल राम कली महला पंजवा तेरे काज ना ग्रह राजमाल तेरे काज ना बिखे जंजाल इष्ट मीत जान सब छलै

बिन हर सगल नरारत काम, सोइना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहां उहां तेरो उजल मुखा, कर कर

त्याग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद।

कुशल सेती घर जाहे पंडित रहाओ। हर का जस निद लिया लाभ, पूर्ण भय मनोरथ साभ। दुख नाथा सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया। नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान। संतोख आया।

भुखार है, इस संग राचे सो कशु ना लह, इस त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

पूर्ण परमेश्वर हर नाचे त्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार इस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटे ओ भ्रम गिरह नानक तरिया।

कबहू न व्यापै हों मैं रोग। खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पावह हर सिमर प्राणी रहाउ। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै ना तार, सगल अपाव ना चालै संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग। देही धोए न उतरै मैल, हों मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, तां का रोग सगल मिट जाए। कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो न बिसर गोपाल, तेरे दास की होवा तूर, नानक की प्रभ शरदा पूर। राम कली महला पंजवां, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई। तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म। तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुद बिन दूजा नाही ठाउ रहाओ। जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगाह पावो ठाउ। दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचै हर नाए। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपुरे की निर्मल रीत। पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै। कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे। टूट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार। राम कली महला पंजवां, रतन जवे हर नाम। सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ तोट ना आवे, अंत नहीं।

केवल ब्रह्म पूर्णतः बासन भगत संग प्रभ गोष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिसे आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख

नहीं जानह भेद, अवतार न जानह अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गत आप जानह, सुन सुन अवर बखाने रहाउ, संकरा नहीं जानह भेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

मत सार जित हर सिमरिजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

मांगन दान ता दरगाह पावे मान। गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत्। सतगुर पए दयाल नानक दास निहाल। राम कले महला पंजवां होवै सोई भल मान। अपना तज अभमान दिन रैन सदा गुण गाओ। पूर्ण एही सवाओ आनंद कर संत हर जप। छाड़ सियानप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर। गुर के चरण नमस्कार भव जले उतर है।

नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहि न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होहे दोहे सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहु कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा हुए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनीजै।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाउ, जो जो करे सोई मान लेहु। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलग।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, हिन मैं थाप थाप नहारा, इस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डीत।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सत गुरु देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी ले

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप प्रगट।

चिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाऊ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद

कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारी, आनंद करहो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन में किरत पया, पूर्व कमाणी छोड़ह नाही। जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा। कृष्ण ना बूझे बहुत हया, असाद रोग उपजे।

बिन सह अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहा गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाव राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाई आवागौन मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा।

राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ। एक अरातो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जागत को जोगी सर्वांशत सो गत छिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद।

ते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कै सिमरै पावै पद निर्वाना भई दयाल कृपाल संत जानू।

इस बात सुर में निमख एक उर धार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे, अपनो जन्म सवार है, राम कली महला नवा, प्राणी नारायण सुध ले, छिन छिन औध घट है निस्बासुर, बिरथा जात है दे रहाउ, तरनापो बिखिन स्यो खोयो, बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहु नहीं समझे, कौन कुमत उरजाना, मानस जन्म दियो जेह ठाकुर, सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै,

नानक कहत चेत चिंता मन, हुए है अंत सहाई। रामकली महला पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चांद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तपत रहै। सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार, हुए परवाना करे तिंगाना। कल लखन विचार रहाउ, कितै देश न आया सुनिए। तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तह नाही। महल उसार न बैठा, जे को सत करे सो शीपै। तप कर तप न होई, जे को नाउ लहे बदनाम। कल के लखन एई जिस सक

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बखरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाओ भया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदै मंगण जाइयै फिर ओ लामा मिलै तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावै है।

दुबदा दुख भागे, घर घर मांगत लाज ना लागे रहाउ। गावह गीत ना चीनह आप, ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। भस्म चढ़ाए करह पाखंड, माया मोहे सह जमदंड। फूटै खापर भीख न पाए, बंधन बांधिया आवे जाए। बिंद न राखह जति कहावह, माई मांगत त्रै लभावह। निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटै निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचारै चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ निद तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाइए रहाऊ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हम मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाय, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परूता, जग सूता मारे आवै जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी, सुन समाद सहज मन राता।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जै त्रै गुण भिखिया जन्म मरी जै राम नाम बिन दुख सही जै चारस पवन संघासन पीजै न्योली कर्म खट कर्म करी जै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै अंतर चोर क्यों साध लीजै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै।

सुंदर दुंदर पास तरी जय। तुरकी सेवा राम रवी जय, नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई। जो कही ऐसो प्रभ ते होई, जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई। उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर। जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाऊ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल। जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान। नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान। हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई। जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई।

मानता न निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाम तुम शरण लागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाम हौ मैं गर्भ जाए मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं।

सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक के दीपक परगासिया त्रिभुवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरभउ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे भवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख सतगुर शब्द विचारी सिंह सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपुरी

जोग जुगत एव पाए, नदरी आवंदा सब किश बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, ता एह सोझी पाए। एहो जोग न होवै जोगी, जे कटंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहै। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इस मैं रूग वड्डा तृष्णा।

माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होए सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजै नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुरसलाही सदा अपना

भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरतारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही बिच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी किन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी।

अहंकारी जिच्चर अंतर सास तिच्चर सेवा कीच जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटो बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा।

किस करना सो कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सृष्ट अपाए सिर सिर तंदे लाई, तिसह सरेवो ता सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई, आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत

वन खंड पाया इन्हीं मोन अवतूत सदाया कोई कहतो अनन भगौती मोहे दीन हर हर ओट लेती इन्हीं कहया हौ तीर्थवासी कोई अन तज भया उदासी इन्हीं भवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया किन्हीं कहया मैं कुलह वड्याई किन्हीं कहया बाहां बहु भाई कोई कह मैं तनह पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं कुंगर निर्तक राई किन्हू वर्त नेम माला पाई किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बहु चेटक लाई किन्हीं पेख बहु थाट बनाए किन्हीं तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कहावे पंडत को खाट कर्म सहत स्यों मंडत कोई करे अचारस करनी मोहे दीन हर हर हर सरनी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नामे इहु मन ना प्रबोदे कहो नानक जो साध संग पाया बूझी तृष्णा महासीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जिन तू करया माती काले देहरा करया उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ मह जिन तू राखिया राखन हार समार जना सगले छोड़ बेचार मना रहाउ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बंता अरमीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन भोजन दिए अंतर थान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन

कर मारे, गुर बोहित वडभागी मिलिया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजवां, काहू बिहावै रंग रस रूप, काहू बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वपारा, संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ, काहू बिहावै वेद अर बाद, काहू बिहावै रसना साध, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाई, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रहन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीव।

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यो राखै रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।